एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंजान ना करी ओ परमात्मा अपने भगत नूं गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवा, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नू कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता औगणे आरा मनुख पशु है गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जाता अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता अवगुण मनुख दे गुणा नू कटदे ने दी हस्ती नू कटदे ते सतगुरु अवगुणा नू कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा है जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जेड़ा मौत तो उपर है और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा गुणा दा जन्म हुंदा दैवी गुणा नू लै के मनुख उपर नू उठदा गुरु नू प्यारा लगदा गुरु नू पाउंदा है संसार नू चंगा लगदा और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचों संताप निकल गए चैन आ गया सुख आ गया जीवन में कायर होंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी होंदे सां उद्यमी बना दिता बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता परोपकारी बना दिता और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है अमृत दियां दातां दे के नाम दियां दातां दे के बाणी दी सौगात बख्श के जीवन दा सुचज बख्शिया साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हों सदा घुमाया मैं वारने जावां सतगुरु तो तिस गुर को हों खन्नीए मैं टोटे टोटे हो जावां बलिहारने जावां उस तो जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया तिस गुर को हों वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने तिस सतगुर को वड पुन है उहदा कोट आन कोट धनवाद उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते जिन अवगुण कट गुणी समझाया सदा उस सतगुरु नू चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है उहदा परउपकार साडे सिर ते उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के अपने प्यार दी निशानी ला के अपना बना के अपना रूप दिता है अपना सुचज बख्शिया है अपना प्यार बख्शिया है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਸਾਣੇ।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी हूं मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: ए ते ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: ए सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, ते मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टैनिन भर के पानी कैसे ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ में भी पानी पाओ, मैं अपनी अखा नाल इस जलदा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार विखे सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

तन जियो ते को जग में, तन जियो ते को जग में, मुक्त हर चित्त में युद्ध विचार।

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहते ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जाके लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है। एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है? सो दर केहा, सो कर केहा, जित दर वसे कवन दर कही है। दरा भीतर दर कवन लहे, वो केड़ा दर है?

अपने जीवन विच जदों जदों भी बोले जो भी शब्द मुख चो उचारण कीते वो तत्काल परमात्मा दी दरगाह विच प्रवान होए। साहिबां दा फरमान है गुरबाणी द्वारा, गुरु नानक बोले दरगहें परवान।

गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक समान हन। सो गुरु नानक देव जी का बोलिया होया सदा ही प्रवान होया, और मेहरवान जो सदा मेहरां दा दाता है, जो भी उसका दास बन

दुर्योधन की सभा के विचकार अपनी लज्जा बचाने वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके ध्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपते हैं उन्हां दी लज्जा वाहेगुरु आप रखदा है। सात संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, वो गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जो थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचया तो उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जी ने उस भेटा दे और सुदामे दे प्यार दे सदके उसनू दुनिया का बेअंत धन बख्श दिता। सुदामे नू नौ नीतियां 18 सिद्धियां दे दिती।

बड़े प्रसन्न हुए। भाई सहदे का प्यार वेख के हिरदे नाल आया, आख्या भाई दया सिंह देश नूं मोरां इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मैनू धन नहीं चाहिदा। सहदिया की चाहिदी? आख्या पछाण लै मेरी सूरत नूं गरीब निवाज, अज मैं तेनू पार कीता बेड़ी तो बिठा के, अज मैं तेनू इस नदी तो बेड़ी ते बिठा के पार कीता। एक दिन मैं भी तेरे पतन आना है। मैं तेनू इस सागर तो पार कीता, तू मैनू पाओ सागर तो पार कर दे। सत सगत बोलो श्री। मेरा लेखा ना पूछी, मेरे जन्मा जन्मांतरा दे लेखे फाड़ के मैनू इस संसार सागर तो पार कर दे। सत सगत बोलो श्री। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने सहदे नूं हिरदे नाल लाया, आख्या सहदिया तेनू ही नहीं बख्शिया, तेरी इक्की कुल्ला बख्शियां। प्यार दे सदके धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन भी पाए, जन्म मरण निवार दिता सतगुरां ने पाई सहदे दा। किस दी खातर? प्रेम दी खातर, प्यार दी खातर। कोई गुरु दे चरणां नाल प्यार पा के तां वेखे। साच कहो

कबीर मानस जंदर लभ है होतना बारंबार जो बंथल पाके पोई गिरे बोरना लागे जा।

तब एक मानस दे ही पाए। मानस जन्म अमोल पायो वृथा काए गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई। तब एक मानस दे ही पाए, इस देह को सिमरे देव सदे पज हर किसे। पजो गोविंद भूल मत जाओ,

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सारंग पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार

या भीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत फिरत

कई जन्म पैकेट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो, कई जन्म पंखे सर्प होयो।

पलतू दोजो सवार, राम राम अंतरों भार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसे ते साच परीखिया, मन तन नाम जपो ले लाए, दुख दर्द मन ते पो जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दरगे निभ खेत तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बोल आवेगा।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाऊं लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक पैतृया।

हर हर चंद्र देव धारे, हर हर चंद्र देव धारे, शिव स्वामी सदगुरु अपना काज सब हमारे, बुंदान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत विचारे।

तेरी ये जवानी को मला जावेगी, थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना।

भाई तू क्यों रोना है? ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है टिकया उठ पवेगा रोन दी केड़ी लोड़। ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान जीरान कहते ने कब्रस्तान कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया है भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है फिर क्यों ना

0: तब इस तुकनु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: चौथा सब मिलके करो कीर्तन।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय का बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगती के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नू भी सोधदा जाए उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हार।

समय दे लोकां ने तां भावें उस नूं शूद्र कहा पर उस रविदास चमार ने राम दा सिमरन करके वाहिगुरु दी भगती करके ओ पदवी पा ली गुरु।

शब्द गुर पीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग भौराना।